जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई।

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहा, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनु कृपा कर हे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिस नौ तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वे खह जा लह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला।

मन एक न चेत संबूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहवरिया। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम। मिल साध संगत भज के बल नाम, सरन जाम लाग पव जल तरन कै। जन्म ब्रिता जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम।

काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संत

भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, अरंक भयो राव कहि भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पैव शंकर कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट चाह चव सकै न कोई।

स्मृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जानियो। श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तू हे बखानियो। दोहरा

सत्संग जी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आशी बोधी पाशे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय भयंकर गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग के सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कारण निधि बताए सब ताई हो सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची दे पित्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दर दस अंतर के खल से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली बुख हड्डियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई के वाहे देख निड़ किया तेना प्यारे से त्यार नहीं कमाई जाते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद करवाए खोपरियां लवाइया चरखड़िया के चले आड़ न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसे देखे सत्संग निभाए तेना नहीं कमाई जाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे का अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेतावे चित आमण का सर का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तरत देवते की फतेह बृद की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखानू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंदे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथे सदा सहाय तैयार जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब धुर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दिदार तो सिया संभाल का दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटियां दी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोर कर अरदास भावे तो आने रास ये गरीब नवाज जी आपके चैन कामना जरदास बख्शी गरीब नवाज आपके जाना पितर गुरबाणी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ जरदार संध्या समा जान के आपके जाना सोधदार रह साधु पाठ कितने कृपा करो वो यहां भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत जन प्रमाण गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय की कृपालता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी चार मन बुद्धि बख्शिश करो। महाराज इस खुशी में आप दी बख्शियां दातों में पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर हाथ दतार आप दी भोग लाओ शीर प्रसाद सार संगत रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शी करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश पदेश रखा बख्शिश करो जी। महाराज आप दी बख्शियां दातों नगर तुट सवाली प्रवानगी महाराज आप दाना सेवा कर रहे सारे प्यारी सिंघा सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करना बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शन की पालता करो गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेत लैके दर्द आई साफ संकत आदि दर्द प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर्द तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ उतार पिता जी आप चन काम बेनती उतार पिता जी आप दर के सेवादार लूण मौजी जी अपने जन्मदिन की खुशी आप देना धनवाद करते शुक्रिया अदा करते गरीब नवाज बिल्डिंग फंड वास्ते $1100 आप चन पेटा प्रवान करो वही करते भाई लूण मौजी तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो तुम्हें कि नाम की दाज बख्शी करके साथ चढ़ी का जी बख्श करके वादा करो चरना जोड़ो सारा गुरुआन का पैर उसकी वादा करो जी दार आप दर के सेवादार परिवार वालों बच्ची हरलीन कौर दे पंजवें जन्मदिन की खुशी में तार पिता जी $100 पेटा करते प्रवान करो तार बख्शिश करो बच्ची हाथ अरलीन कौर तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो उसी की नाम दाज बख्शो कर जी नवाज चरण जोड़ो कमाई का प्यार बख्शो सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ कला करने की वादा करो कमाइया सफल करो दादा जी आप रात बख्शो जी गुरु गरीब नवाज कृपा करो तार जी खालसा पंथ सेख कौम एक दस भाग प्यार की बख्शी करके सत दो दाद बख्शो चानना जोड़ो गुरबाण का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शो की वादा करो जी गुरु गरीब नवाज मेहर करो दूर दराडे घर बैठिया लाइफ तक सरण कर रही सारी संगत करो घड़िया लेके लाओ सतारा आपने कृपा संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਜਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਦ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰ ਚੈਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਘਰ ਵੱਧ ਬਦਲਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਧਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪੁਨਤ ਬਿੰਬਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਵੇਦਰ ਗੁਣਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਦਲਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੱਤੂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਤਾ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਮ ਜਿਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

0: दुनहार क्षत्रिया काल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

सर्व सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करया। घर महनव निद भरे भंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभ

गुरु अमरदास जी महाराज निरंकार दे अगे बेनतियां करते ने, जोदड़ियां करते ने, अरदासां करते ने, सानू जीवां नू भी गुरु दे लड़ लाउंदे ने। कहिंदे तेरे घर केड़ी चीज है, केड़ा सुख है जेड़ा नहीं है, केड़ा दुख है जेड़ा इलाज नहीं है। सच्ची प्यारे हो, कई बारी बंदा दुनिया तो हार जाता है, दुनिया के डाक्टरों तो भी हार जाता है। जिस बीमारी का कोई इलाज ना करे फिर संगत कह दिंदियां ने भी हुण सब तो वड्डा डॉक्टर बाबा नानक है, जा चलिया जा गुरु रामदास जी दे घर, गुरु रामदास जी नालों वड्डा कोई नहीं। ये गल ताई सतगुरां ने पावन अमृतमई बाणी विच लिखी है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी। दुनिया विच बड़े वड्डे वड्डे राजे होए ने, पर उन्होंने राज कमाया वो नहीं कमा सके जो गुरसिखा ने कमाया, जो गुरुआ ने साड़ी चोली पाया। सतगुरु गुरु अमरदास जी कह रहे ने कुछ बख्शिशा ऐसिया ने, कुछ अंदरले सुख ऐसे ने, कुछ औलाद दे सुख ऐसे ने बच्चियां दे जो पैसे टके नाल नहीं मिलते, वो गुरु नानक के घर विच मिलते हैं। बड़ी दुनिया जैसी बैठी है जिन्हां नूं भाग नहीं सी लगते, औलाद तो भी वांझे सन, कारजा तो वांझे सन, उन्होंने गुरु नानक के घर के जोड़े झाड़ के संगतां दी धूड़ी मिट्टी चरणां नूं चरणा वाली मत्थे ते ला के ते गुरु नानक के कीर्तन गा के अपने कर्म बदल। जिहड़ा कर्म लिख सकता है बदल भी सकता है, उदे कोल सारा कुछ है। महाराज कह रहे ने सतगुर ऐसा दयालु है, प्रभ पावे बिन सास ते रखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाके। जे ओ दयाल होवे ना ते मुर्दे विच भी जान पा दिंदा, ते जे ओदी नजर सवली ना होवे फिर चढ़े आकाश गिरावे। महाराज दे भाणे विच ओदी गोद विच बैठ के जेड़े ए अरदास करदे ने, सतगुरु मैं ते तेरे दर दा कीड़ा मुकणा, कि जो मैं गा रहा हाँ ना मैं नहीं, कि तुसी गा रहे हो, तुसी तरस कीता है, तुसी मेर कीती है, जिन्हां दे हथ फड़ के ले

महाराज मेरकरण ये दिन आने वाले बड़े दर्द प्रेमी 84 जिहड़ा सिख पंथ कदे भुला नहीं सकता, बेअंत ऐसी शहीदियां हुई जिन्हां दी शायद गिनती करनी भी औखी है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास सच्चे पातशाह, मेहर करियो हाजरी परवान। आओ गुरमुख प्यारे भाई साहब जी, भाई सकत्तर सिंह जी, गुरु दे साजे निवाजी, दसरिया वालों गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों जी आया नू बड़े सुचजे ढंग नाल गुरमत विचार साड़ी चोली पाउंदे ने। भाई साहब जी नू बेनती है आके सेवा निभाउण जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।

माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिन से सब दुख माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ कोट जन्म

दर्शन पेटत उतरी भुख, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न

0: गावो, सोहे लासे दो सृजन हारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हो, वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने की मत ना पवे तिस दाते कवन सुमार। संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असी सड़िया जो हो सब सुमेल। कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरै नानक से देह अमन राजा समान ला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुरे को वे सने बाबा जय कर कर से कीरत होए। सो कर राख बढ़ाई तो रहा विच जसियां कड़ियां पैरा थी तिवारी महो होवा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तना श्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शोभा जंत पेरी रहो। सहस तब नैन नैन है तो हे को, सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरु साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लो वित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाय वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पन वड्डा है, कर दंडावत पन वड्डा है। रहाओ साकत हर रसाद न जाने, तिन अंतर हो मैं गंडा है। जिन जो चले चुके दुख पावे, जमकाल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मरण भव खंडा है। अवनासी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु सोखंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाह। आगे बसन सोहेला, औद कटे दिनस रहना रे। मन गुर मिलका सवारे, रहाओ एहो संसार विकार संसेमे। तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पिया वे एहो रस अकत कथा तिन जानी। जा को आए सोए बिहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे, बोर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन किए पूरे। नानक दास
1: सुख मांग मोगु।

अहनिश सहज सुभाए, दर्शन पर से है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह, तुद डिठे सचे पात, मल जन्म जन्म दी

जे पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझे जे को ए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सुकर ने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने की या नानक जो पावे सोवरतिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुकाट नहार जाके संग तर संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कै हृदय विश्वास प्रवयाया तत् ज्ञान सुमन प्रगटाया भय ते निर्भउ हुए बसाना जिस ते उपजे तिसमय समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई पूजै बुझनहार विवेक नारायण बिल नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जी तया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ समार है अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे भस्म कर लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटता पोता को राखत देख कर हाथ मानस जतन करत भात तिसके कर्तव्य जात मार न रखे अवर न कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रबल खविडानी बार बार बार प्रभ जपिय पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रजो जन त्रिपताने मंत्र नामे नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करे भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह के न जानो आठ पहर प्रभ सह हजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरी तिनकी उठ ले मन तन मन ताने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाव मिटावे अवर से अनप सगली छाड़ते जन की तू सेवा लाग आवन जाना हुवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाऊ तिसके संग से खुद रह नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुर सिख का हल्त बल सवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप सको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बिचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्ज रास

होए नेकामी तिसको उत्प्राप स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे। नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनिक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग रहता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सह स्यान तो लया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पेट तसंग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आगानी, मन संतो गातम पतियानी, पूरा गुरख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख है हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नाम जिस पावे तिस लय मिलाए, जे बाएक सतन एक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहु बोल न पोचित प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वय सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंदन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है, सत बलिहारी सत गुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, एहो अरस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो हो, इस पुरखा नाही कदे बिना, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया के संग न ले, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तहते न से, तप्त माय ठाठ वरताई, अनंत पै दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाओ चुका निर्भव हुए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका साथ तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, चित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हरा जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगले मोही, अपने चरित प्रभा बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व निरंतर को सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी,

सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरह नाम जपावहु। भगत भाई धरिय संसार, बिन भगती तन हो सीछार। सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख कावो वतनास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तने अंतर ही सुआओ। नित्रो पेख दर सुख होए, मन बिकसे साध चरण तो होए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक वस्त दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाय, नानक रहया सर्व समाय। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सोए पुनीत, भगत भाई लावे मनहीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनिक राज भोग वड्याई, हर के नाम की कथा मन पाए। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार इहु कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग गमाथ। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख शोक कहो किसे व्यापत। जब अपने आप अपार ब्रह्म, तब मोह कहा कि सोत परम।

प्रभ की वलतनी, तब बंद मुक्त कौ किसको गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलता करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन्म मरन कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अभिगत अगोचर प्रभेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे, अपना पापिय चर जाओ, नानक अपन रूप आपी उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो हो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगतीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसै भूख कवन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तह बेद कतेव का कूचीन, जब अपने आप उरतारे, तो सगन अप सगन कहा बिचार, जे अपन ऊच अपन आप नीरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा, विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अछेद अभेद समाया, ऊहा किसह व्यापत माया, आपस को आप है आदेश, त्यह गुण का नाही परवेश, यह कहे एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, यह अपना आप पतियारा, तह कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उचते उचा, नानक आपस को आप है पहुँचा, जय आप रचियो परपंच कार, त्यह गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन तै पही कहावत, को नरक को सुर्ग बंचावत, आल जाल माया जंजाल, हमें मोह परम पै पार, तूक सूक मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान, अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक के, जय अभिगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप, दूह पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी, आपह कौत करे अनद चूज,
ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੇ ਆਪਣ ਨਾ ਇਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਥਾ ਗੰਤੇ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ

नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनहु बिसारे, तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जन हो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जन आप, अंतर जामी रहो व्याप।

रचियो सोति सहत्यात जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हरे कै नाई तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ।

अन दिन पूजह गुर के पैर। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रव्या पह मेले।

मिटै अज्ञान बिन से अंधेरा सुनुपदेश हृदय बसावहु मन इच्छे नानक फल पावहु हलत पलत

जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माही, नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन हुवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोत निहाल, ताकै निकट नयावत।

पहला श्लोक ज्ञानंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नौ निदमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरण माहे आकाश दयालु सर्वलोक पूर्ण प्रतपालु बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वैसंतर माही चार कुंट दह दिसे समाह चार कुंट दह दिसे समाही इसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ भेद प्राण सिमृत मह देख सस्य सो नखियत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाई है गुण है अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद भरम का नासु नानक तिन में इहु विसासु संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुई सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भाव है ता करे विस्तार तिस भाव है ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भाव है तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज सियाप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आवर तारा सर्व नैना पिख नहारा सगल समग्री जा का तना अपन जसा पी सुनावन जानी केल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कह मद लिप्तो रह जो किछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावै ता ले समाई स्थि हुए सुना ही बुरा और कहो हो किने कच करा आप भला करतू तत्निकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए जिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआउ जन कै संग चितिया वै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो प्रदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आसो नित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सात संग अगण सागर तरहो हर तन के पर ले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद सात संग पज परमानंद
नरक निवार उदहरु जीव गुण गोविंद अमृत रस पीयो चित चितो नारायण एक गुरु जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के बचन मलिक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप त्रैलो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मल्लागा रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत कह माते नानक कुदर तिन कह साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सुबरे नम्रत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेवा जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सो रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की स्तुत करो संत मी सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण हुए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब त्यूज पाए स्थान बहुर न होवै आवण जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांतरित नवनित बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगासु सब कह मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता हे फल तिस जन कह मुख भनी गुरु नानक नाम बचन मन सुने हो निदान जपै मन कोई सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन वाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कूट अपरा सासंग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा के मस्त कर्म प्रपाई साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन मरण ताका दुख निवार दुर्लभ दे तत्काल उधार है निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माई सुमानी दुख रोग बिन से पै परमु साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की

जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं, छपाए छंद त्व प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन, जात अर पात नहन जेहे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमित ओज केहे। जय कोट इंद्र इंद्राण साहु सहान गणिजय, त्रिभवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन त्रिण कहत, त्वा सर्व नाम कथय कवन। कर्म नाम बरनत सुमत, भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अतर्मंग, नमस्तंग अनामंग, नमस्तंग अतामंग, नमस्तंग अजीते, नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग अटाहे, नमस्तंग अनिले, नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अशेदे, नमस्तंग अगादे, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सो एक, नमस्तंग अनेक, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निर्कर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरतहते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग तिरमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग अगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तिरवर्गे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रभुगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्ये, नमस्तस्तरम्ये, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निरतामे, नमस्तंग निर्बामे। नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले। नमस्तस्त देव, नमस्तंग अपेव, नमस्तंग अजनमे, नमस्तंग सुबनमे। नमो सर्वगौने, नमो सर्वपौने, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग अबरने, नमस्तंग अमरने, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतंदे, नमो सत अबंदे, नमस्तंग नृसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्तरागे, नमस्तंग सुहागे। नमो सर्वसोखं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्वा प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमित है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पाहुणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, प्रभंगी प्रमाथे, समस्ती विभूते, क्लंकंग

स्वरूपे, नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृदे, नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते, नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो साहसाहं नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं इष्णानं, नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं, नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धता बुद्धता बृद्धकर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तास्ततामं, तेरा जोर चाचरे शांद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग प्रयात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ती निधाने, नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे, नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वदेशे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो माह माहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं, नमो सर्व गयानं नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृशं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी, चरपट शांत त्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत तर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छंद त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरुख अपार, सर्वमान त्रिमान देव आपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरुख उदार मूरत अजून आद असेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब, तात मात न जात जाकर जानम मरण बहीन, चक्र बकर फिरै चतुर चक मानहि पुर तीन, लोक चौदह के बिखै जग जापहि जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थापयो सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व सवरच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेशो, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीख अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित, मधुभार शंत व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश, नेस दिन अनास आजान बाहु शाहान शाहु, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग अपा अपंग गतमित अपार, गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपहय निकाम,
आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाची शंतु प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात शंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश अधिश अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते कि आछेज दिस है कि अभिज पिस है कि अगंज कर्म है कि अभंज भरम है कि अभिज लोक है कि आदित्य सोक है कि अवधूत वर्ण है कि बेभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगदंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनपाओ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक है अधीने के रोजी रजा कह रही मेरी हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अपूल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशुज है अशुत है कि नरकंग प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत व प्रसाद सर्वंघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है आमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्त उल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है
ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸ ਉਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ ਉਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸ ਉਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸ ਉਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਅਮੀ ਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਅਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬੇਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜੋ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਂਜੋ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨ ਸ਼ੇਜ ਆਂਗੋ ਆਸੁਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਾਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾਹੋ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚੇਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਸ਼ੇਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਠਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ਅਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੁਰ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਅਰਕਾਲਯ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਭਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ ਸਰਬੰਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ ਸਰਪਾਸ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਪਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ ਭਾਵ ਭੰਜਨ ਹੈ ਆਰੇ ਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਮ ਸੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਆਕਾਮੇ ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਬੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਭੰਜ ਅਲਖ ਅਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾ ਅਡਾ ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਪਰਮੰਗ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰ ਬੇਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬੇਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬੇਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਓਂ ਕਰਿਓਂ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ
सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं तुआ प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुध सुधाविक संत समूह, अनेक मति के सारे ही देश को। देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते। एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारे। भारी पुजान के भूप, भली बेद न्यावत सीस ना जात बिचारे। इते भय तो कहा भय भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे। जीत फिर सब देश दिशान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूड गजान के सुंदर, हिंसत ही हाय राज हजारे। भूत पवेक पवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पात श्री भगवान भजे बेन, अंत को अंत के ताम सिधारे। तीर्थ नान दया दम दान, सो संयम नेम अनेक बसिख है। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है। पौन आहार जति जात तार, सब सो विचार हजार क देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेखाय। सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान परे मन मय, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीर मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पात श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े परियार, अब चारा सार की तार पशैया। तोर तदेश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। गड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंदन साचर, भूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्र सवै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नानक जातिक दान, अनेक सुवंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पात के प्रस है पाग, ते नर फेर ना दे तरेंगे। कहां भयो जो दो लोचन, मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पशा को शीस निवायो। को बुतान कौ पूजत है पाश, को मृतान कौ पूजन तायो। कूर किरिया उर्जयो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर किरिया उर्जयो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम का वहो। आप हाथ दय मुहे बचा वहो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिया। सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं,
सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करे हौ रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा करत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार त्यै है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। केल बेखो सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शाय करता। श्री अस तुज जब पये दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहै। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कह जय। भाद्रव सदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।
पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार कौ शाड कह गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ शाड कह गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द तगावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया इस नाऊ होर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर किरपा किल वेख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ तेरी कित द्वारे पाईऐ तान मान तान सब सौंप गुर कहो हुक्म मने है पाईऐ हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो हो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया
ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਏ, ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬੋ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੋਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸਹਿ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹੋ ਸਹਸਾ ਏਵ ਜਾਏ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ, ਮਰਨ ਮਨਹੋਂ ਵੇਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਓ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਬੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ, ਫਿਰ

सतगुर के जी की सार न जापै के पूरे सतगुर पावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो

नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत महला पंजवा, नानक मित्राई तिस स्यो, सब किछ जिस कै हाथ, कुमित्रा से ही कांडी है, एक विख न चल है साथ पौड़ी, अमृत नाम निदान है, मिल पी वह पाई, जिस सिमरत सुख पाई है, सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म, गुर भुख रह न काई, सगल

अविनाशी सुनिया जल थल मही अल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सक

नाए विसरे त्रिक जीवना, टूटे कच धागे नानक धूड़ पुनीत, साध लख कोट पिरागे। श्लोक महला पंजवा। धरन सुवन्नी खड़।

सम्मान योग्य सत्संगी जनों, मैं आप जी नू जिन्हां शब्दों का कीर्तन सुना रहा हां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वडियाई विच जदों जदों भी जां प्रकाश होया, संपूर्णता हुई, जां गुरता गद्दी ते गुरु साहिब शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होए, जो हुक्मनामे आए मैं उन्हां दा कीर्तन कर रहा हां। थोड़ा जा मैं क्योंकि सानू गाउण वाले नूं दिक्कत हुंदी स्केल दा हिसाब किताब हुंदा गाउण दा, उस हिसाब नाल मैं उपर तो शुरू किया है। जिहड़ा नदेड़ दी धरती ते हजूर साहिब हुक्मनामा सानू बख्शिश होया सी जदों गुरता प्राप्त हुई शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, उस हुक्मनामे दा मैं कीर्तन कर रहा हां। दूसरा

जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे परिवार नूं कि वो बच्चे दा पल्ला बच्ची नूं पकड़ाउणगे जी, नाल पल्ले दा शब्द गायन किया जाएगा। बेनती है कि पल्ले दी रस्म अदा की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ना खुशियां पाशाहियां जिस सतगुर नजर करे निमके घर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। बड़े खुशियां परे मौके ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी पावन दरबार दी हाजरी भर के बख्शन लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अकाल पुरख जी की अपार बख्शिश हुई है कि नवप्रीत सिंह सपुत्र सरदार बलजीत सिंह ते बीबी सिमर कौर जी दे आनंद कार्ज होए ने। बच्ची जशनदीप कौर नाल जो सपुत्री है श्री हरपाल ते माता सोन जी दी बच्ची। सो इस खुशी पर मौके ते मैं जिसे सपाक जोड़ी नूं लख लख बधाई दिंदा हां। उत्थे उन्हां दे माता पिता रिश्तेदारां साख संबंधी मित्रां दोस्तां नूं सबना लख लख बधाई दिंदा हाँ। ते नाल गुरु पातशाह अरदास करदा कि अकाल पुरख उन्हां दी जोड़ी सदा लई बनाई रखे। जोड़ी जीवै जुग चार तिहार ये गुरबाणी का फरमान है। तो इन्होंने अज चार परिक्रमा करके बिना बोलिया आप जी ने दोनों ने इस जीवन के अंदर एक दूजे का साथ देने प्रण किया है। सो चेता रखना आप जी ने, तो क्योंकि तंत्र ग्रंथ साहब जी साढ़े सिख धर्म के सब तो उच्च साढ़े वास्ते उच्च स्थान से। सो उन्हां दी बख्शिश हुई है गुरु साहब जी की, तो गुरु बख्श करे आप जी नूं व्यवस्था जीवन दियां सारियां खुशियां बख्शे, सफलतावां बख्शे, नामदान बख्शे। साडी अरदास है ते सदा सेवा संबंधी अंदाता बख्शता रहे। हुण मैं बेनती करां भाई साहब नवनीत सिंह जी नूं कि उह सुभाग जोड़ी नूं सन्मान करनगे जी। आप खड़े होके सन्मान लै लोगे तो चंगा जी दोनों जने।

बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भाई साहब भाई नमरीत सिंह जी आपकी सेवा निभाने लई ते धन्यवाद है इतने आप समूह संगत का जो दोनों पासियां दे सदे से आके अज आप जी ने गुरु दरबार दी हाजरियां भर के गुरु दरबार की रौनक बधाई है ते विआह के अंदर भी आप जी ने इस तरह रौनक बधाई है। सो नाल भाई साहब अंकार सिंह जी साडे कीर्तन जथे का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने लाई बन के कीर्तन सरवण करवाए ने। भाई साहब नवनीत सिंह जी जिन्होंने सारा प्रोग्राम लाई बाणी के पाठ से बाकी प्रोग्राम जो हैं वो सारे गुरमर्यादा अनुसार करवाए हैं। सो उन्होंने भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सो हार्दिक धन्यवाद साढ़े आउट विजय रूम वाले जी भी जो सेवा निभा रहे हैं। सो किसी ने आके बधाई देनी है तो आ सकते हो जी। अच्छा फिर से समाप्ति है जी। हाँ जी ठीक है। सो आपने देख ला लीए तो अच्छा हाँ जी चल। सो आप समूह संगत का फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दोनों परिवार वालों। तो हम आप जी हाँ जी लाना अच्छा लंगर इतने छकना उन्होंने लंगर अच्छा चलो ठीक है। चलो फिर चंगा जी बहुत बहुत धन्यवाद ते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह। इतने भी लंगर है गुरु का जे किसी इतने जी करता इतने भी छक सकते हो जी। हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

0: प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़दे हुई भुलां दे खिमा करना जी। अज जिसने किता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समा सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हमें का जगत में आयो, कर्म भेद को दे पिठायो। हमें का जगत में आए, धर्म हेत को दे पिठाए। जहां तहां तुम धर्म बिसारो, दुष्ट दोखियन फकर पिछारो। यह काज तरा हम जन्मन, समझ लो साधु सब मन मन। धर्म चलावन संत वारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। भावें दे हां क्योंकि ये लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन। तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार के भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां का खात्मा किया। बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावें अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साढ़े लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।